अर्ज है कुछ मजनू बने कुछ रांझा बने कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए वो देखो